अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है इज्तिनाब रखोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे।

क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने तई पाकीजा कहते हैं? नहीं, बल्कि खुदा ही जिसको चाहता है पाकीजा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा।

क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं और चाहते ये हैं कि अपना मुकदमा एक सरकश के पास ले जाकर फैसल कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उससे एतकाद न रखें, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहकाकर रस्ते से दूर डाल दे।

उन लोगों के दिलों में जो कुछ है खुदा उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल न करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं।

मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम के साथ लड़ने से रुक गए हों, तुम्हारे पास आ जाएं तो एहतराज जरूर नहीं, और अगर खुदा चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता तो वो तुमसे जरूर लड़ती। फिर अगर वो तुमसे जंग करने से कनारा कशी करें और लड़ें नहीं और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें तो खुदा ने तुम्हारे लिए उन पर जबरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की।

तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब फितना अंगेजी को बुलाए जाए तो उसमें औंधे मुंह गिर पड़े। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से कनारा कशी न करें और न तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और न अपने हाथों को रोकें, तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो। उन लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हारे लिए

फिर जब तुम नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में खुदा को याद करो। फिर जब खौफ जाता रहे तो इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह अमन की हालत में पढ़ते हो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है।

और कुफार के पीछा करने में सुस्ती न करना। अगर तुम बेआराम होते हो तो जिस तरह तुम बेआराम होते हो उसी तरह वो भी बेआराम होते हैं, और तुम खुदा से ऐसी ऐसी उम्मीदें रखते हो जो वो नहीं रख सकते, और खुदा सब कुछ जानता और बड़ी हिकमत वाला है।

0: ये लोगों से तो छुपते हैं और खुदा से नहीं छुपते, हालांकि जब वो रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो उनके साथ हुआ करता है, और खुदा उनके तमाम कामों पर इहाता किए हुए है।
1: हाँ।

उन लोगों की बहुत सी मशवरतें अच्छी नहीं। हाँ, उस शख्स की मशवरत अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम खुदा की खुशनूदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे।

और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, और वो साहिब ईमान भी होगा, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनकी तिल बराबर भी हक तलफी न की जाएगी।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे द फ्यूचर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन पर, और हमारे साथ इस गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मिस राबिया अरशद, जिन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, सेलुलर नेटवर्क्स क्या होते हैं, और अभी जो जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी वो कौन सी थी, और उनको दूर करने के लिए कौन से फ्यूचर वायरलेस नेटवर्क्स पे काम किया जा रहा है, और कहाँ कहाँ ये इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। जी मिस, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रही थी कि सेल्फ्री वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो ट्रेडिशनल सेलुलर सिस्टम का ऑल्टरनेट है। आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि सेल्फ्री और ट्रेडिशनल सेलुलर सिस्टम में बेसिक फ़र्क क्या होता है।
2: हाँ जी, मैं इसे तफसील से थोड़ा ज़रूर बताना चाहूँगी ताकि जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे नेटवर्क्स और वायरलेस नेटवर्क की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये चीज़ जो है सामने आए कि वो किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं और इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल जो सेलुलर सिस्टम होता है उसमें एक फिक्स्ड एरिया है, और जैसे आप एक उसको डिवाइड कर रहे हैं फिक्स साइज के सेल्स में, जो मैं बता चुकी हूँ। अब हर सेल में एक बेस स्टेशन होगा, सिर्फ एक ही बेस स्टेशन है, और उसमें डिफरेंट एंटीनाज लगे होंगे
1: जी।
2: वो डिफरेंट एंटीनाज यूजर्स को सर्व कर रहे होते हैं। अब उसमें जो यूजर्स तो बेस स्टेशन के करीब हैं उनके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, और अगर यूजर्स जो दूर होंगे उनके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ बनिस्बत उन यूजर्स के जो करीब होंगे इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। सेल्फ्री फिर ये इश्यूज आए कि यूजर्स को एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल रही सिग्नल स्ट्रेंथ में, उनको मसला आ रहा है जो कि सेल एज के यूजर्स हैं और भी बहुत सारे, कि हमारे पास एक सेल से जब हम दूसरे सेल में जा रहे हैं तो सिग्नल्स हमारे पास ब्रेक हो रहे हैं, हैंड ओवर का इशू आ रहा है। सेल्फ्री सिस्टम की अगर हम बात करें,
1: बिल्कुल
2: सेल्फ्री सिस्टम में अब सेल्स में डिवीजन नहीं है, अब पूरा एरिया एक आप कह लें कि सेल्स में जब डिवाइड ही नहीं है, कोई बाउंड्री ही नहीं है उस चीज की। अब हमारे पास एक बेस स्टेशन नहीं है, अब डिफरेंट उस बेस स्टेशन को हम सेल्फ्री सिस्टम में एक्सेस पॉइंट्स कहते हैं, और सेम वही कॉन्सेप्ट है, एक्सेस पॉइंट पे डिफरेंट नंबर ऑफ एंटीनाज लगे हुए हैं जो कि यूजर्स को सर्व करेंगे। अब यूजर अगर सेल एज पे मौजूद है, क्योंकि सेल तो है ही नहीं, अब यूजर अगर उस एक्सेस पॉइंट किसी एक एक्सेस पॉइंट के साथ अटैच नहीं है, डिफरेंट मुतद्दिद एक्सेस पॉइंट्स उस एरिया में बिखरे हुए हैं, अब अगर यूजर के करीब वाला एक्सेस पॉइंट उसको रिप्लाई नहीं दे रहा, उसके सिग्नल्स को रिप्लाई मींस दैट के जी उसको सिग्नल्स को ओके नहीं कर रहा, एक रिस्पांस नहीं भेज रहा, तो उसको दूसरा कोई एक्सेस पॉइंट जो उस वक्त फ्री बैठा है वो उसको रिप्लाई बैक कर सकता है। अब यहाँ आके ये हो जाता है कि कवरेज ज्यादा हो रही है, यूजर को वेट नहीं करना पड़ रहा अपनी कॉल्स अटेंड करने के लिए, जो एक्सेस पॉइंट फ्री है यूजर को सर्विस देने के लिए वो उसको उस वक्त सर्व कर सकता है। अब ये एरिया पे भी सेल्स पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो रही है, डेटा रेट इंप्रूव हो रहा है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी हमारे पास ज्यादा आ रही है, और यूजर्स के दरमियान इंटरफेरेंस भी एज कम्पेयर टू सेलुलर सिस्टम किसी हद तक ये कंट्रोल हो जाती है।
1: बिल्कुल मिस, अभी आपने जिक्र किया कि हाई डेटा रेट है और डिले का सामना करना पड़ रहा है, तो फ्यूचर नेटवर्क्स के लिए इनकी इम्पोर्टेंस क्या है?
2: ये बहुत ज़रूरी है किसी भी नेटवर्क के लिए, और नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास जो भी आपका नेटवर्क है वो कितना डाटा रेट प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम थ्रूपुट भी कहते हैं आम लैंग्वेज में, यूज़र्स की लैंग्वेज में, और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी डिले के बगैर ट्रांसफ़र हो सके। डिले को हम नेटवर्क्स की ज़ुबान में लेटेंसी भी कहते हैं, लेटेंसी होती है कि डिले का सामना करना पड़ रहा है। अब डिले जितना कम है यूजर की क्यूरी, फॉर एग्जांपल आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, जितना हमारे दरमियान डिले आ रहा है ये अच्छी चीज़ नहीं है। रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए, उसको हम नेटवर्क की जुबान में कहते हैं कि लेटेंसी इस चीज़ की कम है। तो नेटवर्क्स की रिलायबिलिटी के लिए, और बेहतरीन इसको हम एक पैरामीटर समझते हैं अपने नेटवर्क्स का, कि हमारे पास डाटा रेट बहुत अच्छा आना चाहिए और लेटेंसी कम से कम आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए बहुत अहम चीज़ें हैं, जो कि और स्मूथ कनेक्टिविटी के लिए इनकी बेतहाशा ज़रूरत है और फ्यूचर कम्युनिकेशंस के लिए हम इन्हें बहुत ज़्यादा अहम पैरामीटर एक तस्वुर करते हैं। और हम मानते हैं कि जिन ममालिक में 5G भी इंट्रोड्यूस हो चुका है उसमें 5G की भी सबसे ज़्यादा यही गारंटी है कि उसमें डाटा रेट बहुत हाई है, एक तो कवरेज भी ज़्यादा है।
1: मिस, अभी आपने जिक्र किया कि दुनिया जो है वो 5G की तरफ जा रही है और सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान में भी 5G जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन अभी तो पाकिस्तान में पूरी तरह 4G भी नहीं काम कर रहा, तो ये किस तरह फिर इम्प्लीमेंट होगा? और अगर तो 5G आ चुका है तो कौन कौन से सिटीज़ में ये इस पर काम हो चुका है?
2: बेसिकली पाकिस्तान में तो 5G अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया हुआ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे तो अभी तक प्रॉपर सिग्नल भी नहीं आ पाते।
1: नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं तो वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ये फेस करना पड़ता है।
2: जी बिल्कुल, और इवन के आप अगर हमारे देहाती इलाकों की बात करें, इवन जब हमारे पास ऑनलाइन क्लासेज आई थी कोरोना के दौर में, तो तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो बेचारे जिनके इलाकों में सिग्नल्स आते ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में उनको इतनी मुश्किलात पेश आई। अब ये सिर्फ हम 5G की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल टावर की। अब एक इलाके में नॉर्मल टावर ही नहीं है तो हमारे पास तो अभी 5G की कोई फैसिलिटी इस तरह से अफसोस के तौर पे कहना पड़ रहा है कि अनकरीब तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसा कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है तो आने वाले वक्त में मजीद 5-6-10 सालों तक हो सकता है कि यहाँ पे भी 5G इम्प्लीमेंट हो जाए। LTE और 4G तक तो बात आ चुकी है, लेकिन 5G तक तो अभी नहीं है, लेकिन दूसरे ममालिक में ये आ चुकी है, लाइक साउथ कोरिया है, इंग्लैंड है, वहाँ पे सिम्स जो हैं आपकी 5G पे काम कर रही हैं, नेटवर्क्स 5G पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ जाता है एक छोटे सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे द फ्यूचर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। हमारे साथ मौजूद हैं मिस राबिया अरशद, जिन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि ट्रेडिशनल सेलुलर नेटवर्क्स क्या होते और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अब किस तरह के नेटवर्क्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। जी मिस, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें बड़ी तफसील से बताया कि हाई डेटा क्या होता है, सेल फ्री वायरलेस किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह डिलेस को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बर वक्त जो मैसेज हैं या जो डेटा ट्रांसमिट है वो एक जगह से दूसरी जगह बेहतर तरीके से हो सके। तो और ये जो फ्यूचर वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। तो आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि रिसर्च के हवाले से इसमें क्या क्या काम हो रहा है या हमारे स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन है इसमें काम करने के लिए।
2: हाँ जी, इसमें ये बहुत ही बड़ी डोमेन है जिसमें के स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीएचडी भी कर रहे हैं, एमएस, और इवन के आउट ऑफ कंट्री भी जो है स्कॉलरशिप पे बच्चे जा रहे हैं और इसी डोमेन में जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बेसिकली ये इसको डिजिटल दुनिया का हर हिस्सा रिलायबल कनेक्टिविटी पर हमारे पास डिपेंड करता है
1: जी।
2: अब उस रिलायबल कनेक्टिविटी को हासिल करने के लिए नई आइडिया और टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हमारे पास नेटवर्क एफिशिएंसी, कवरेज और यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की बात की जाती है
1: जी।
2: अब उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसा कि अगर हम ये कहें कि पुराने सेलुलर नेटवर्क में हमारे पास सिग्नल्स किस तरह से अचीव किए जाते हैं, उसकी टेक्निक हम ऑर्थोगोनल टेक्निक यूज़ करती थी। ये बहुत ही एक टेक्निकल टर्म है, ऑब्वियसली जो कि स्टूडेंट्स इसमें कर रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। अब ऑर्थोगोनल टेक्निक में जो अब सिग्नल्स हमारे पास अचीव हो रहे हैं, अब वो यूज़र्स ज़्यादा होने की वजह से ऑर्थोगोनलिटी भी अजीब नहीं हो रही
1: जी।
2: जिसकी वजह से हमारे पास रिसर्च में आ रही है नॉन ऑर्थोगोनल टेक्निक्स। उन नॉन ऑर्थोगोनल टेक्निक में तो बेतहाशा फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च के एरियाज को आगे परसू कर सकते हैं अपनी पीएचडीज के लिए भी। अब उनमें आ जाता है एनर्जी एफिशिएंसी भी होनी चाहिए आपके नेटवर्क में
1: जी।
2: दैट इज,
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: बात करता हूँ तो मुझे लगता है यार, एक क्रेडिबल एजुकेटेड इंसान जिसकी एक जर्नी है वो नज़र आता है। पहले तो बच्चों को सबसे पहले करना चाहिए कि जो आपके हाथ में गैजेट अल्लाह ने आपको दिया ना, जो अम्मी अबू ने आपके लिए बड़ी मुश्किल से आईफोन खरीद दिया, इसको रिसर्च टूल बनाएं। मैं और आप जब बड़े हो रहे थे तो हमें वेबस्टर डिक्शनरी में एक लफ्ज़ ढूंढने के लिए 15 मिनट लग जाते थे।
1: बिल्कुल ऐसे
0: हम इसमें से गुजरे हैं। मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि भाई आपके पास गैजेट अपने आपके हाथ में आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से रिसर्च शुरू करें कि यार रिसर्च क्या है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप के तहत एक बच्चा है जिसकी अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, मैं उससे शुरू करूंगा, वही मेरा मेन बच्चा है। बाकी जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है उसके लिए चीज़ें अलग है, जिसके पास अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल नहीं है लेकिन मेरी वो आपकी तरफ प्रोग्रेसिव है, वो सर्च करें कि जी दुनिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स क्या हैं। 10-12 शॉर्टलिस्ट करें, उसको 6 में अपने डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और वही बच्चा अप्लाई कर दे। मैं चाहता हूँ जब ये हमारी उम्र को आए तो इवन अगर इसको स्कॉलरशिप ना भी मिले, इसके पास एक कहानी होगी अपने बच्चों को बताने की कि मैंने अप्लाई किया था, मैंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जेल अप्लाई किया था। ये वो कहानी बोले, ना कि ये बैठा हो कि काश मैंने अप्लाई किया होता, काश रिमूव कर दे। तो पहले रिसर्च शुरू कर दे। दूसरी बात, जब रिसर्च कर दे, शॉर्टलिस्ट कर दे, एप्लीकेशन कर दे, अगर अल्लाह का फजल हमेशा रहता है इंसान के साथ, अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया तब भी ठीक है, रिस्पॉन्स ना आना भी एक रिस्पॉन्स है। ईमेल कर दे, लिंक्डइन है, जिस तरह हम फेसबुक, सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हमें लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी को ऐड करना चाहिए, उसके प्रोफेसर को ऐड करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जी मैंने अप्लाई किया था, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। अपने प्रोफाइल पे काम करें। एकेडेमिक्स में अच्छा होना सिर्फ अच्छा होना नहीं, आपके पास प्रोफाइल है, फिलंथ्रोफी आपने की है, चैरिटी की है अपने पास, आपने MUN किया है, स्टूडेंट काउंसिल किया है, तो अपने आप को इतना बनाए कि यूनिवर्सिटी आपको बोले कि भाई हमारी तरफ आ जाओ। ये तो एक वो हो गया उस बच्चे के लिए जो स्टार्ट कहां से लेगा। एजेंट्स में भी ऐसा है, इन्फॉर्मेशन लेने में कोई हर्ज नहीं, इन्फॉर्मेशन ले लें, क्रेडिबिलिटी चेक कर लें कि एजेंट कितना तगड़ा है, कितना वेल ट्रेवल्ड है, क्या इसका फुटप्रिंट है। अच्छा, मैं इस पर एक छोटी सी भी ये करेक्शन भी कर दूं कि सारे एजेंट बुरे नहीं है, कुछ बड़ा क्लियर है कि जी हम आपसे XYZ अमाउंट लेंगे, आपको UK यहां लेके आएंगे, लेकिन वो एंड ऑफ द डे एजेंट होते हैं, एजुकेटर नहीं होते। बच्चों को आप जैसे लोगों के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ बैठना चाहिए कि उनको पता चले कि यार दुनिया कहां जा रही है, क्या हो रहा है। अच्छा, ये तो एक लिमिटेशन हो गई कि जी यूनिवर्सिटी अफोर्डेबिलिटी। एक फिर आता है कि जी दुनिया में वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, कहां हम वेलकम है बीइंग अ पाकिस्तानी, कहां हम वेलकम नहीं है। अच्छा, जब हम बड़े हो रहे थे, मैं और आप, आखिरी 30-35 साल में पैटर्न्स ही चेंज हो गए हैं। लोग हर उस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जहां हमने नाम नहीं सुने थे, एक गिने चुने डेस्टिनेशन थे, अब वो डेस्टिनेशन कंजेस्टेड हो गए हैं। UK की एग्जाम्पल ले लें, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी बच्चा ऐसा होता है कि जिसका UK का ऑप्शन होता है, लेकिन आपने देखा है कि UK की लाइफ मुश्किल है, कंजेस्टेड है, जॉब्स नहीं है, यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव है। आप ईस्टर्न यूरोप का देख लें, यूरोप का देख लें, आप एशिया पैसिफिक का देख लें, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देख लें, जापान देख लें, आप मलेशिया देख लें। आपने डेस्टिनेशन भी फाइनल कर दी, आपने रिसर्च भी कर दिया, आप एजेंट से भी मिल ले, अब आपके लिए एप्लीकेशन कौन डालेगा? अगर मेरे भाई आपने FSC और आपने BSc करके आपके लिए एप्लीकेशन को किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप अपनी डिग्री भी वापस कर दें और अपनी मेट्रिकुलेशन भी वापस कर दें। आपने कुछ नहीं सीखा, आप अपने गैजेट को नहीं यूज़ कर सकते, ब्लैंक्स नहीं फिल कर सकते, चीज़ें नहीं अपलोड कर सकते, YouTube वीडियोस नहीं डाउनलोड कर सकते कि यार ये यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहा हूँ इसका बेस्ट तरीका क्या है, रिकमेंडेशन लेटर बेस्ट तरीके से कैसे हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें होती है इल्ला मासा आप है, कुरान ने बड़ा क्लियर बोला है इल्ला मासा, तुम्हारा साहा तुम्हारी फिट किधर है। अपनी एफर्ट से शुरू करें, अल्लाह पे तवक्कल करें और अल्लाह आपको ज़रूर देगा। कब देगा, कहां देगा, कैसे देगा और किस सोर्स से देगा वो मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है मेहनत हमें करनी है।
1: आपने बड़ा खूबसूरती से सारा जो है स्टेप आपने इसको मेरा ख्याल है कि समराइज कर दिया है। हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे और अभी इसको थोड़ा सा और अनफोल्ड करेंगे। जिस तरह आपने पहला स्टेप बताया कि पहला स्टेप है कि आप अप्लाई करें, फुली फंडेड स्कॉलरशिप देखें, उसे अप्लाई करें, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे कि अप्लाई के बाद कौन कौन से स्टेप्स हैं और डिफरेंट जो लोग हैं जो चाहते हैं कि यार अगर फुली फंडेड नहीं भी मिलता, पार्शली फंडेड हो जाए, या हम फी पे भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये सारी सामीन बातें होने वाली हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर इसको सुने, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डायरेक्टली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो एक बेस्ट रिसोर्स पर्सन है ऑन द सब्जेक्ट वो हमारे साथ मौजूद है। साथ साथ हमने आपको क्योंकि इंटरटेन भी करना है और आपके इंटरटेनमेंट के लिए भी हम जा रहे हैं एक म्यूजिक ब्रेक पे, और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अली अशरफ और प्रोग्राम है आपका मंजिल। और जब हम वापस आएंगे तो जो बातें मैंने की हैं इस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं आपकी मेज़बान आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। आप सुन रहे हैं नखले अदब। उम्मीद करती हूँ आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत पॉजिटिव गुजरा होगा, आपने बहुत कुछ अच्छा किया होगा, नए तजुर्बात किए होंगे, और अगर कुछ पॉजिटिव नहीं भी रहा होगा तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश की होगी। आज हमारा प्रोग्राम का जो मौजू है वो बहुत ही मुख्तलिफ है हमारे पिछले मौजूद से। आज हमने अपने प्रोग्राम पर जिनको दावत दी है वो खुद एक जर्नलिस्ट हैं और राना अब्दुल्ला हमाद हैं, जिन्होंने बहुत से अच्छे चैनल्स पर काम किया, वर्ल्ड टाइम, इंस्टा, संडे टाइम्स, डेली टाइम्स। तो आज हम इनसे बात करेंगे जर्नलिज्म से मुतल्लिक, सेंसेशनलिज्म से मुतल्लिक, मिस इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक, और जर्नलिज्म क्या है आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। तो अस्सलाम वालेकुम हमाद, कैसे हो आप?
4: वालेकुम अस्सलाम तहजीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए।
3: मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि कितनी टफ रूटीन है आपकी और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी अब्दुल्ला के आप हमारे ऑडियंस को अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें कि व्हाट आर यू डूइंग और क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका।
4: मैंने स्टार्ट किया द न्यूज़ ऑन संडे, उस्मान गफूर वहाँ पे होते थे उनके साथ एज ए फ्रीलांस रिपोर्टर, और कई वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ कवर की, उसके अलावा ऑन फील्ड जाके फिर काम किया, और ऑन फील्ड जब काम किया तो कई ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जो आला हुकाम तक भी पहुँची और वहाँ से भी फीडबैक आई। उसके बाद फिर TNS पे काम करने के बाद आगे प्रोपेगेंडा, एक डिजिटल मीडिया कंपनी है, उनके साथ काम किया, और उनके साथ काम करने के बाद अब मैं उधर एडिटोरियल हेड कर रहा हूँ, वीडियो डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसके अलावा डेली टाइम्स जो पाकिस्तान का लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर था एक वक्त के अंदर, अब तो नहीं, तो उनके लिए, उनके डिजिटल के लिए मैंने न्यूज़ पैकेजेस, न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस की, इंटरव्यूज़ किए, उसके अलावा वर्ल्ड टाइम्स के साथ जो एक CSS अकेडमी है उनके साथ मैंने उनकी पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंदर पॉलिटिशियंस को होस्ट किया, सेलिब्रिटीज़ को होस्ट किया, एंड ब्यूरोक्रेट्स को होस्ट किया। उसके अलावा अभी रिसेंटली संडे टाइम्स के साथ मैंने एक शो स्टार्ट किया था, संडे स्टोरीज़ विद राना अब्दुल्ला, अब तो खैर वो ख़त्म हो गया, बट उनके साथ ये किया लेटेस्ट काम, और मोर और लेस यही है।
3: अच्छा अब्दुल्ला, आपका जो ग्रेजुएशन है वो भी मीडिया के सब्जेक्ट के अंदर है, तो अगर आप थोड़ा सा इसके मुतलिक बताएं कि कितने क्या कितना ज़रूरी है एक जर्नलिस्ट के लिए मीडिया की फील्ड में ही डिग्री लेना, और क्या सिखाती है मीडिया की फील्ड, और कितना हेल्प आउट करती है जर्नलिज्म में मीडिया की जो प्रॉपर डिग्री है?
4: बिल्कुल भी नहीं हेल्प करती है। अगर इसका आप सही जवाब पूछेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हेल्प करती। आज भी हमारे पास कई ऐसे एंकर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई, आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, एंड साइंसेस पढ़ी हुई हैं, और वो आज आके एंकर बैठे हुए और बने हुए एंकर। तो जी, कुछ हद तक या कुछ इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के अंदर, अगर आप वहाँ से मीडिया की डिग्री करें वो आपको लाजमी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके अलावा आज के दौर के अंदर जिसके हाथ में फ़ोन है, जिसके हाथ में कलम है, वो या लिख सकते हैं या वो बोल सकते हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मीडिया की डिग्री हाँ एक हद तक ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद मीडिया की डिग्री आपको जियो के अंदर, डॉन के अंदर, AY के अंदर, XYZ के अंदर नौकरी नहीं दिलवा सकती है। वो आपका अपना काम है जो आपको नौकरी दिलवा सकता है। आप एक जगह इंजीनियरिंग करके, इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री करके, साइंसेस के अंदर डिग्री करके, उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल खोल लें, आपको कोई ना कोई मीडिया चैनल उठा के लेके चला जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो के इतना।
3: अच्छा, आपने बात कही कि जिसके पास फ़ोन है या जिसके पास कलम है वो बोल भी रहा है और लिख भी रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि जिसके पास है वो बोल रहा है, उसको नहीं पता कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं, लेकिन वो कर रहा है?
4: قدغنیں اتنی زیادہ ہیں آپ کی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جس طریقے سے آپ کو آف ایئر کیا جاتا ہے. پاکستان کے ایک بڑے لیڈنگ اینکر اس ٹائم پہ آف ایئر ہیں, کاشف عباسی جو کہ اسلام آباد سے شو کرتے تھے ایئر فائی کے لیے, اور اب وہ آف ایئر ہیں. اینڈ کیوں آف ایئر ہیں, کیسے آف ایئر ہوئے وہ سب جانتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیزن جرنلزم کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ اب آ کے ابھر رہا ہے, جو کہ باہر یو کے کے اندر, یو ایس کے اندر اس لحاظ سے بڑے عرصے عرصہ دراز سے یہ والی چیز چل رہی ہے. بٹ اس سب کے اندر ہی جب آپ کے پاس ایک کیمرہ ہے, ایک قلم ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن پھر رسپانسبلٹی ساری آپ کے اوپر آ جاتی ہے. ایک اسٹوری کو فیکٹ چیک کرنا, ایک انسیڈنٹ کو فیکٹ چیک کرنا, کسی بھی واقعے کو ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھنا, وہ آپ کے اوپر آ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں نگیٹو بھی ہے بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایک پازیٹیو بھی ہے. آج بھی جیو جو اپنے کئی فیکٹ چیکس چلاتا ہے, یا اگر جیو جس طریقے سے انہوں نے ابھی فلڈس کے اندر رپورٹنگ کی, وہ بھی سٹیزن جرنلسٹ سے ہی انہوں نے کانٹینٹ لے کے اس کے بعد وہ چلایا. سو آئی فیل ضروری بھی ہے بٹ ان کے اوپر ایک نظر بھی ہونی چاہیے کہ وہ فیکٹ چیک رپورٹس ہیں کہ نہیں ہیں.
3: اچھا, آج کا جو پاکستان کا جرنلزم ہے, بہت سے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے لیڈنگ اینکرز اس وقت آف ایئر ہوئے ہوئے ہیں, تو وٹ انسپائرز یو کہ آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے اور ڈگری لینی ہے اور پھر آگے اس کو پرسیو بھی کرنا ہے, تو آپ کو یہ ڈر نہیں لگا کہ ایسا میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے, یہاں کہ آپ کی اگر فریڈم آف اسپیچ کو روک دیا گیا تو پھر؟
4: نہیں, وہ رکا نا, وہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد اس واقعے کے بعد میں نے اس پہ ویڈیو بنائی, ایک وی لاگ بنایا, اور میں رات کے تقریباً 10:30 کے قریب ایک جگہ سے جا رہا تھا اور مجھے کال آ گئی, اور انہوں نے کال کی, انہوں نے کہا کہ آپ یہ یہ یہ یہ کر رہے ہیں ابھی اور یہ ہیں, اور اس کو آپ اتار دیں, ادھر سے بھی اتار دیں, ادھر سے بھی اتار دیں. تو وہ نہ صرف یہ, اس کے علاوہ پھر میں ایک مرتبہ یہاں پہ لاہور میں کہیں پہ ٹریول کر رہا تھا, تو کچھ ایک جتھا لوگوں کا آیا اور انہوں نے پیچھے سے سمجھانے کی بھی کوشش کی, سب کچھ ہوا. لیکن اس سب کے اندر بھی ابھی بھی اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو گنی چنی ہی آوازیں ہیں جن کو آپ بھی نیوٹرل کہہ سکیں گی, میں بھی نیوٹرل کہہ سکوں گا. وہی چند آوازیں ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, جن کو سن سن کے, دیکھ دیکھ کے, پڑھ پڑھ کے میرا دل ہوا کہ میں اسی طریقے کا یا اسی طرز کا ایک صحافی بنوں. اینڈ اسپیسیفکلی جس طریقے کے یو ایس سی این این بی بی سی کے جرنلسٹ ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کے ایک بچپن سے ہی کہنے ایک شوق تھا کہ صحافت کی طرف ہی جانا ہے.
3: اوکے, ہم اسی سے پر بات کریں گے اور مزید گفتگو بھی کریں گے. ہم نے ابھی ایک ٹاپک پہ بات کرنی بھی ہے, مس انفارمیشن پہ. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. हम बात कर रहे हैं आज अपने प्रोग्राम में मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, सेंसेशनलिज्म के बारे में, और जर्नलिज्म क्या है पाकिस्तान में, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे आप पर इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं कि आप ये बात बोल सकते हैं और ये बात नहीं बोल सकते. और इसी के साथ हमारे साथ हैं अब्दुल्ला. अब्दुल्ला, हम ब्रेक पर जाने से पहले आपकी जर्नी के बारे में पूछ रहे थे, तो आपने बताया था कि जिसके पास फ़ोन है और जिसके पास कलम है, वो लिख भी रहा है और बोल भी रहा है. उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि सब अपने अपने तौर पर आके अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और नेगेटिव भी हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपके पास नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा भर गई है. अब आपने एक इंसिडेंट देखा है या किसी ने रिपोर्ट किया है, तो आप उस पर डिटेल सर्च नहीं कर रहे, आपने बस देखा है और बग़ैर तस्दीक किए अपने चैनल से जाके भी बोल दिए. तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हो?
4: अभी सना यूसुफ मर्डर केस जब इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, तब एयरवाइन ने एक तस्वीर चला दी थी एक लड़के की, और उस लड़के की आज तक जीना हराम हुआ उस लड़के का. और एयरवाइन जैसे मेन स्ट्रीम चैनल ने एक गलत बंदे की, गलत पर्पिट्रेटर की पिक्चर चला दी, ठीक है. अब वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. वहाँ पे 15 मिनट के बाद उन्होंने उसकी शक्ल उतार दी और अपॉलोजी एक टेंडर कर दी. बट आज के दौर के अंदर डिजिटल दौर है ना, जिसकी वजह से एक फास्ट पेस्ड है, इन्फॉर्मेशन का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, और उसी तरह से इन्फॉर्मेशन का आउटफ्लो भी हमने ज़्यादा रखा है आजकल के दौर के अंदर. मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि फैक्ट चेक जितना आज ज़रूरी है, उतना शायद ही कभी पहले और ज़रूरी होता. हमने पंजाब कॉलेज वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर देखा था जिस तरीके से फेक न्यूज़ का एक पूरा समुंदर चला था, कि उसके बाद CM को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी. फैक्ट चेक और मिस इन्फॉर्मेशन इस हद तक फैलती है कि पाकिस्तान इंडिया की जब जंग वाला वाकया हुआ था, तब जिस तरीके से पाकिस्तान की साइड से भी, इंडिया की साइड से भी एक इनफ्लो था ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट वेरिफिकेशन, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन. और उसके बाद मैंने तब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये चीज़ रियलाइज़ की कि जब पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान का कोई जेट अभी तक नहीं डाउन हुआ था, बट ChatGPT जो एक सॉफ्टवेयर है, ChatGPT के मुताबिक पाकिस्तान के 2 जेट्स डाउन हो गए हुए थे, विच मीन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इनफ्लो इंडिया की तरफ से इस हद तक इन्फॉर्मेशन को फैलाया जा रहा था कि एक सॉफ्टवेयर भी अपनी बायसेंस दिखाने लग गया था. आजकल के दौर के अंदर फैक्ट चेकिंग की अभी भी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ डॉन है, सिर्फ जियो है और ट्रिब्यून है जिनके पास फैक्ट चेकिंग की टीम है, या करंट एक है उनके पास कुछ हद तक फैक्ट चेकिंग की टीम है. बट यहाँ पे ये होता है कि जिस सेकेंड खबर आई है कोई, जैसे आज सुबह से एक बड़ी खबर चल रही थी कि ड्रोन पाकिस्तान ने एक लाहौर के अंदर एक शूट डाउन हुआ है, शॉट किया एक ड्रोन को, ठीक है. अब वो चल रही है ट्विटर पे, चल रही है. अब कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं है जो ये करेगा कि यार अच्छा बरकी के पास गिरा, तो चलो मैं SHO बरकी को कॉल करके पता करता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, या चलो मैं किसी अपने कोई सोर्स, अगर फौज के अंदर है, बॉर्डर के ऊपर कोई सोर्स है, मैं उससे पता करके वो कर लेता हूँ. वो ये नहीं करेगा. वो सबसे पहले ये करेगा कि ड्रोन गिरे, आ जाओ चलें स्टूडियो, चलें उठो बैठो, वीडियो बनाओ, दस्ती से जाके चढ़ा दो. उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग के बारे में नहीं सोचते, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है हमारी जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से आज भी मिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इस हद तक है कि लोगों की जाने तक इसमें चली जाती है. जिस तरीके से ब्लास्फेमी की एलिगेशंस सोशल मीडिया के ऊपर लग जाती हैं, और उसके बाद आपको नहीं पता है कि आप यहाँ से कमरे से बाहर निकलेंगे, आपकी जान गई. अभी एक पॉडकास्ट के अंदर मुनीब कादर ने कहा कि जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के ऊपर कई ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसके ऊपर बंदा, जिस बंदे ने, अगर आपको किसी ग्रुप के अंदर ऐड करे एक बंदा, और उसके बाद वो बंदा खुद ग्रुप से बाहर निकल जाए, बट उस ग्रुप के अंदर कोई ब्लास्फेमस कंटेंट शेयर हुआ हो, और वो कंटेंट की स्क्रीनशॉट आप उठा के उस बंदे को भेज दें जिस बंदे ने आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया था, तो ब्लास्फेमी की एलिगेशन आपके ऊपर लग जाएगी, और उसके 2 दिन के बाद आपकी लाश पड़ी होगी. इस हद तक पाकिस्तान के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और मैल इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आज तहम्मुल मिजाजी जितनी इम्पॉर्टेंट है वो शायद ही कभी और हो.
3: अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये रेटिंग्स की वजह से भी है? क्योंकि सबको चाहिए कि हम जल्दी से न्यूज़ ब्रेक कर दें. अब इंडिया पाकिस्तान की जंग की आपने बात की कि वो कितना सेंसिटिव टॉपिक था, कि आपने एक एक खबर बड़े ध्यान से देनी, और हमने देखा कि इंडिया ने किस तरह से दी, और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं तक बहुत पॉजिटिव जर्नलिज्म रहा उन दिनों में. लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारा रेटिंग्स की वजह से है कि सेंसेशनलिज्म आ जाए, हमारे चैनल ने सबसे पहले ये खबर दी और वो तस्दीक नहीं करते उस खबर की, अगर हम मेन स्ट्रीम की भी बात करें?
4: नहीं, आपने पाकिस्तान इंडिया की जंग के बारे में बात किया. सुनो न्यूज़ के ऊपर एक बीपर चला जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जयशंकर ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया ने इस वजह से सीज़ फायर किया क्योंकि वो डर गए हुए थे. अब जब इंडिया की तरफ से जो आप कहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब इस बात के अंदर कोई रियलिटी नहीं थी, बट वो चली आपके मेन स्ट्रीम सैटेलाइट चैनल के ऊपर, वो न्यूज़ चली. आज भी लोग उस न्यूज़ को उठा के वो कह सकते हैं कि ये देख जयशंकर ने ये कहा हुआ था. इनफ्लो इतना ज़्यादा है, बट हमारे मीडिया हाउसेस के अंदर अफोर्डेबिलिटी उन बिजनेसमैन के पास इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ज़्यादा लोगों को हायर करके एक न्यूज़ को फैक्ट चेक किया जा सके. यहाँ पे हर दूसरा तीसरा मीडिया हाउस इस पे रिलाय करता है कि बिजनेस को बढ़ाया किस तरीके से जाए, ना कि उस बिजनेस की अंदर वेरिफिकेशन लाई जाए, उस बिजनेस को सस्टेनेबल बनाया जाए. आप मिस इन्फॉर्मेशन करके, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे के व्यूज तो ले लेंगे, बट उससे होगा क्या? उसे होगा ये कि आप दूसरों की जिंदगियां जेपर्डी में डालेंगे, उसे होगा ये कि आप दूसरों के लिए जीना हराम करेंगे इन सिंपल प्लेन एंड ओपन वर्ड्स. अभी भी पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, ठीक है, और बाहर जाके वो उसी तरीके से धड़ल्ले से मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन चला रहे हैं. तो यही है कि इन्फॉर्मेशन जो है उसका इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, बट उसको वेरीफाई करने के लिए लोग ना मीडिया हाउसेज ना यूट्यूबर्स हायर करने के लिए तैयार हैं.
3: आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हायरिंग इशू ये भी है कि पर्ची पर जो लोग आ रहे हैं उनके पास एज सच उतना टैलेंट नहीं है, या वो इतना काम करना नहीं चाह रहे, बस वो अपनी सीट के लिए आते हैं और वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं?
4: वो तो हर जगह नेपोटिज्म, तो हर जगह नेपोटिज्म भी हर जगह है. ब्राइब करके भी आप हर जगह जा सकते हैं, रेफरेंसेस के थ्रू भी आप हर जगह जा सकते हैं, बट वो आप 6 महीने तक ही एक जगह जा सकते हैं, ठीक है. अगर आपके अंदर टैलेंट है तभी आप आगे जा सकते हैं, वरना कोई सेठ ऐसा नहीं पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है जो सालों साल आपकी सैलरियाँ देने के लिए तैयार बैठा हुआ है. वो कहेगा 6 महीने तक है, ठीक है, वो जिस मर्जी का बेटा है, जिस मर्जी की बेटी है, या जो मर्जिया है उसको निकाल देगा. टैलेंट नहीं है तो आप यू कैन नॉट सर्वाइव इन पाकिस्तान इफ़ यू डोंट हैव टैलेंट. इवन इन जर्नलिज्म आप देख लें, नेपोटिज्म को देख लें, किसी को पैसे लगा के भी आप अंदर घुसा दें. कहीं ऐसे साफी हैं जो आज आउट ऑफ बिजनेस हैं. क्यों आउट ऑफ बिजनेस? इसलिए आउट ऑफ बिजनेस, टैलेंट नहीं था उनके अंदर, वो चाह नहीं थी, इसलिए बस सेठ उन्हें निकाल दी. एज सिंपल एज दैट.
3: अगर इसी के साथ हम, आपको क्या लगता है कि अब ये मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, आपने कुछ केसेस बताए भी जिसमें सना यूसुफ का केस था, व्हाट डू यू थिंक कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अपनी तरफ से पैमरा मजीद एलिगेशंस लगा देते हैं, आप पैमरा के उन एलिगेशंस को किस तरह देखते हो कि वो फ़ायदा देती हैं या नहीं? उससे मजीद आपके अंदर नहीं आता कि नहीं अब तो मैंने ये बात करनी ही करनी है? इसी पर हम मजीद गुफ्तगु करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. हम बात कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन पे, रेटिंग्स पे, जर्नलिज्म पे, और हमारे साथ मौजूद हैं राना अब्दुल्ला. हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में कि कितनी ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन और क्या नुकसान हैं उसके. अगर आप छोटे से जुमले में बता सकें कि अब्दुल्ला, आपको क्या लगता है कि कैसे ये बेहतर हो सकती है मिस इन्फॉर्मेशन?
2: पहले यूएस की इसी साल 2025 के आगाज़ में ही यूएस की तरफ से फंडिंग बंद हुई, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे फैक्ट चेकिंग इदारे थे जो कि बंद हो गए. आज भी मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी सिर्फ वाहिद, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा है जो कि फैक्ट चेकिंग के ऊपर बड़ी कड़ी निगाहें रखता है और अपने आप को वॉच डॉग भी कहता है. जिसके बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया जो था फैक्टर के नाम से, एक सॉफ्टवेयर था जिसके ऊपर कोई भी न्यूज़ डाल के, तो उसके बाद MMFD ने एक अपनी टीम बिठाई हुई जो उसको वेरीफाई करके न्यूज आपको बता देती थी, बट वो यूएस की फंडिंग के थ्रू चल रहा था. जब से वो फंडिंग बंद हुई, 2 से 3 महीने तक फैक्टर रहा, उसके बाद वो आउट ऑफ, मेरा गालबन 2 से 3 महीने ऐसे कम ही टाइम के अंदर, और उसके बाद वो ख़त्म हो गया. बट उससे ये हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो हैं, जियो, डॉन, ट्रिब्यून, आई थिंक, उन्होंने वो चीज़ उठा ली फैक्ट चेकिंग वाली, कि किस कितना अहम है फैक्ट चेक करना. रिसेंटली अभी जनरल आसिम मुनीर की एक ऊपर फ्लैग वाली वीडियो चल रही थी कि ये किसी ग्राउंड के ऊपर से वो फ्लैग गया है जनरल आसिम मुनीर का, तो अब वो ओरिजिनल वीडियो नहीं थी. अब ये गालिबन ट्विटर के ऊपर सब लोग यही समझ रहे हैं कि ओरिजिनल वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो, बट इन रियलिटी वो ओरिजिनल वीडियो नहीं है, जिसकी वजह से एक सोशल मीडिया पे पूरा एक वो चला, एक डिस्कशन हुई और सब कुछ हुई, और वो मिस इन्फॉर्मेशन को आगे से आगे तक चले गए. बट अब ये हुआ है कि MMFD ही जो इदारा है, मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने एक बार दोबारा फैक्ट चेकिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है हैकाथॉन के थ्रू. उनका एक इवेंट वो लोग करवाते हैं जिसके अंदर लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से वो सहाफ़ियों को ट्रेन करते हैं कि फैक्ट चेकिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि they put your and other people's lives in jeopardy, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड करेगा.
1: अच्छा, आपको ये कितना खतरनाक लगता है कि जिसने आपने भी बताया कि वो AI जनरेटेड वीडियो थी, तो AI जनरेटेड इतनी वीडियोस आना शुरू हो गई हैं और लोग उनको करते भी हैं. अब पाक इंडिया वॉर के सीन्स में भी था, एक वीडियो थी जिसको बहुत अरसे तक समझा जाता रहा कि ये ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं थी. तो आप कितना खतरनाक देखते हैं AI को?
2: बिल्कुल थ्रेट है एट द सेम टाइम, बट वो आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हो सकता है. अभी भी अगर आपने कोई भी वीडियो फैक्ट चेक करनी हो या किसी भी वीडियो के बारे में आपने और जानना हो, आप सबसे पहले AI पे जाएंगे, ChatGPT पे जाएंगे, ChatGPT 4.0 पेपर से जाएंगे, और उससे आप पूछेंगे कि क्या ये वीडियो ओरिजिनल है कि नहीं है. वो आपको बताएगा नहीं है ओरिजिनल, ये चलें वो कहता है कि हाँ है ओरिजिनल. फिर आप उसी वीडियो को लेके जाएंगे एक और सॉफ्टवेयर के ऊपर, इनविड के ऊपर, आप उधर से उसका मेटा डेटा एनालिसिस करेंगे, उधर से आप उसका ट्रैक वगैरह देखेंगे, एक्स फाइल वगैरह देखेंगे, उधर से आपको पता चलेगा कि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है. लेकिन वो वीडियो स्टार्ट कहाँ से हुई, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, जी आप उसमें 2 से 3 घंटे की रिसर्च करके उस बंदे तक पहुंच सकते हैं. यही चीज़ आप ChatGPT को देंगे, ChatGPT आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये वीडियो इधर से ओरिजिनेट हुई है. जो यंग न्यू एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए ChatGPT इज अ किलर. व्हाई? बिकॉज मसला ये, दे आर नॉट विलिंग टू पुट इन द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वन

0: स्टोरीज वेरिफिकेशन और टू परस्यू अ स्टोरी. बस अब चैट जीपीटी पे एक न्यू स्टोरी डाली, ठीक है, उसको कहा कि यार इसको सही करके दे दे, द न्यूज़ के लिहाज से सही करके दे दे, डॉन के ट्रिब्यून के लिहाज से सही करके दे, वो दे तो देगी. बट इवेंचुअली क्या होगा कि आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस है, आपका एक मेंटल थिंकिंग प्रोसेस है, वो सब कुछ हैम्पर होगा उसके अंदर. लेकिन अगले 5 साल के अंदर AI इन जर्नलिज्म इज गोइंग टू टेक ओवर. ये तो एक एक वो वाली बात है जो कि आप डिनाई नहीं कर सकते. हाँ. हो दिस इज अ फ्यूचर विच इज फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी नीड टू एक्सेप्ट AI. अभी भी पाकिस्तान के अंदर बेशतर ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो कि AI को बिल्कुल डिनोट करते हैं, निगेट करते हैं, बट ये रियलिटी बन जाएगी आगे जाके. तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट रादर देन फाइटिंग इट.
1: आपका जो करियर है, आपने अपने स्कूल लेवल में डिबेट्स वगैरह भी की, तो व्हाट डू यू थिंक के रिपोर्टिंग में या जर्नलिज्म में तलफ्फुज को लेके खास तौर पर कितनी ज़रूरी हैं? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कितनी हेल्पफुल हैं डिबेट्स?
0: नहीं, डिबेट्स बेशक बहुत हेल्प करती हैं आपको. एक पब्लिक स्पीकिंग का आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं. 1,000, 2,000, 3,000, 500 लोगों के अंदर बोलने का तौर तरीका आपको सिखाती है. डिबेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कॉन्टेंट की कंजम्पशन भी इम्पॉर्टेंट है. कॉन्टेंट वो आप पढ़ के कह रहे हैं, वो आप देख के कह रहे हैं, सुन के कह रहे हैं, उसकी कंजम्पशन इज ऑल्सो एंड रीडिंग स्पेसिफिकली इज गोइंग टू टेक यू टू न्यूअर रोड्स. बिकॉज मसला ये पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे किसी भी तरह का तलफ्फुज बोलने, अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आपका तलफ्फुज जैसा मर्जी हो, आपको बोलने का तरीका ही ना आता हो, बैठने का तरीका ना आता हो, लेकिन फिर भी आप साफी बन सकते हैं, फिर भी आप डॉलर्स ले सकते हैं, फिर भी आप पैसे कमा सकते हैं. तो यहाँ पे जो एक जेनेरिक सोच है पाकिस्तान के अंदर ऑफ रीडिंग, राइटिंग, रिसर्चिंग, वो ख़त्म होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है. अब भी पाकिस्तान के अंदर डिबेटिंग कॉम्पिटिशन जो आज से 10 साल पहले तक 20 थे अगर, तो अब वो गालिबन 8 या 9 हो चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा. सो जहाँ पाकिस्तान के अंदर तरक्की भी हो रही है इन द सेंस ऑफ यू नो टेक्नोलॉजी, AI एंड वॉट नॉट, बट वहाँ पे एक हम लोग पीछे भी जाते जा रहे हैं, स्टोन एज के अंदर भी जाते जा रहे हैं, फायरवॉल के इंडक्शन एंड मल्टीपल अदर एग्जांपल्स.
1: मुझे जहाँ तक लगता है आपकी सारी उस गुफ्तगू सुन के भी और जो हमारे टॉपिक्स भी थे, कि आज के दौर में 2025 के अंदर वो व्यूज़ की लालच कह लें इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब आप कंटेंट पे काम ही नहीं कर रहे. आपने आने और कुछ ऐसा बोलें, कुछ हमारे ड्रामास का भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कसूर है कि वो आपको वो चीज़ें शायद प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जो क्योंकि ऑडियंस वहाँ से सीख रही है ना, तो आप सिर्फ वायरल होना चाह रहे हो, आपको सिर्फ व्यूज़ चाहिए. अब हमारे जो यूट्यूब पर जो कंटेंट क्रिएटर्स बने हुए हैं, जिनको बच्चे देख रहे हैं और जो सीख रहे हैं, तो वो आगे कल को क्या कंटेंट प्रोवाइड करेंगे? तो
0: अच्छा, बात यहाँ पे सिंपल सी ये है कि ना वो कह रहे हैं आपको उनको देखा जाए, ना बच्चे कह रहे हैं कि उनको देखा जाए. बच्चों के पास ऑप्शन सब कुछ है, मेरे पास भी ऑप्शन सब कुछ है, मैं आज रजब भट्ट को देखूं या मैं तलत हुसैन को सुनूं, ठीक है, वो ऑप्शन मेरे पास है. ड्रामास को भी देखने की या ड्रामास के अंदर भी जो मैसेजिंग है या सब कुछ है, वो ऑप्शन मेरे हाथ में है कि मैंने वो ड्रामा देखना है कि नहीं देखना है, मैंने वो कंटेंट कंज्यूम करना है कि नहीं करना है. सो जस्ट मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि जस्ट लेबलिंग और ब्लेमिंग द ड्रामास और यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर्स, वो कोई एक सोल्यूटोजेनिक अप्रोच नहीं होगी, वो आपको किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जाएगा, बट आपको और पीछे धकेलता जाएगा कि उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसकी गलती है, उसकी गलती. बट असल में हकीकत में इंसान की खुद की ही गलती होती है, बंदा एक्सेप्ट करने को नहीं उसके.
1: बट डोंट यू थिंक सो कि अगर एक बच्चा है, अब उसको तो ऐसा नहीं पता कि तलत हुसैन क्या है या मैंने उनको क्या सुन के क्या सीखना है, लेकिन अगर वो उस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो वो उससे कुछ भी नहीं सीख रहा ना. यहाँ तो ये हो कि वो आप चलो कुछ तो सीख रहा हो, कुछ फायदा तो हो रहा हो, तो वहाँ उस बच्चे की गलती तो नहीं हुई ना. फिर
0: पेरेंट्स का भी तो यहाँ पे रोल आता है ना, एक पेरेंट्स का भी रोल है, एक सोसाइटी का भी रोल है, ठीक है, या वो उसके किस तरह की इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं. अब तो मोबाइल्स के अंदर भी आप वो चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं और कितनी देर आपने स्क्रीन टाइम यूज़ करना है, कितनी देर नहीं करना है. उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब किड्स भी है, सब कुछ है. तो वो इट्स ओनली अबाउट द ऑप्शंस दैट वी वांट टू चूज, अदरवाइज वो ब्लेम हम लोग किसी भी कर सकते हैं कि कत्ल इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ.
1: थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छे तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, उस कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है पाकिस्तान में. एंड यू आर डूइंग टू गुड, बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर और थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो. इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन गजा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: And now, you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुबारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता इसलिए किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी मम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ उधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम करके आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेर जाते हैं जो भी हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते हैं अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई की जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी कल का सरकट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे अब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है और मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे इनसे इनकी इस्तेदाद और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मुशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुर अज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, अगर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
1: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
7: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया से। लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल आज रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। जिंदगी के मामलात किसी भी किस्म के हों, जैसे कि राइड बुकिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन मेडिसिन, चैटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, शॉपिंग, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, इंटरनेट की शमूलियत हर शोबे में लाजमी है। मगर कुछ सालों से आईटी की फील्ड में एक नई टर्म का जिक्र बहुत बढ़ चुका है। न सिर्फ जिक्र बढ़ चुका है बल्कि इंडस्ट्री और रिसर्च में इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, और वो टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आज हम रोशनी डालेंगे इस टर्म के टेक्निकल एक्सपर्ट्स पर। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सर आबिद बशीर, जो कि UCPFOIT SE डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल लेक्चरर हैं और वायरलेस नेटवर्क्स एंड रेडियो सिस्टम्स की फील्ड में रिसर्च का तजुर्बा रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम IoT के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हमें बताएं कि असल में ये है क्या और ये किस तरह दुनिया को बदल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: जी वालेकुम सलाम।
2: बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
3: जी आपका शुक्रिया, आपने मदद किया।
2: चलिए सर, वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ आते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि IoT, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं, असल में ये है क्या?
3: जी, बुनियादी तौर पे इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ज़माने में हम जब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कंडक्ट करते थे, तो उसके हवाले से हमारे पास कुछ मोबाइल डिवाइसेज होती हैं, जैसे हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो जब भी आपने इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है, डाटा शेयरिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटिंग डिवाइस होना ज़रूरी है। चल, इट कुड बी अ मोबाइल, वो हो सकता है मोबाइल हो, वो आपके पास लैपटॉप हो, वो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। अभी कुछ अरसे से आप एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि होम ऑटोमेशन के हवाले से, लाइक मैं अगर घर पे नहीं हूँ तो मैं अपने CCTV कैमरा को देखना चाहता हूँ। तो जो कैमरा एक वो ऐसी एंटिटी है जो कि इंटरनेट डिवाइस, वो कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है सॉरी, लेकिन वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो इंटरनेट पे कनेक्ट है।
2: जी।
3: इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैं घर में अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी होम सिक्योरिटी को मैनेज करना चाहता हूँ, लाइक मेरी डोर्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हों, मेरा जो एयर कंडीशन का सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो मैं अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं और अपने मोबाइल के जरिए अपना किसी भी अपनी होम अप्लायंस को ऑब्जर्व करना चाहता हूं, या किसी भी एंटिटी ऑफ माय होम को जो है वो कंट्रोल करना चाह रहा हूं या मैनेज करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए उस डिवाइस, उस होम एंटिटी का या अप्लायंस का इंटरनेट पर कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो जब ऐसी चीज़ें इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो एक ऐसी एंटिटीज़ बन जाती हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन वो कंप्यूटिंग डिवाइस ना होने के बावजूद कनेक्टेड है। दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट। तो उनको हम थिंग्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो रेफर करते हैं, और ये एक मिला के एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, विच इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
2: सर, क्या ये कहना सही है कि IoT नेटवर्क में हर डिवाइस एक कंप्यूटर का रोल अदा कर रही होती है?
3: बेसिकली हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अलावा इनको कंप्यूटर का रोल अदा करने वाली डिवाइस तो नहीं कह सकते
2: जी।
3: लेकिन जब वो मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के अलावा कोई भी डिवाइस, लाइक मेरा सेपरेट यूनिट है, इन्वर्टर है, मेरी फ्रिज है, मेरा माइक्रोवेव है, मेरी डोर है, या मेरी अलार्म क्लॉक है, या मेरा CCTV कैमरा है, ये कंप्यूटिंग डिवाइस का रोल अदा नहीं कर रही, मगर ये एक ऐसी एंटिटी के तौर पर बिहेव कर रही है जो इंटरनेट पर कनेक्ट हो गई है
2: जी।
3: और जब वो इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाती हैं, तो हम उसको किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं।
2: Exactly.
3: और जब वो उस नेटवर्क का पार्ट बन जाती हैं, तो एक लार्ज नेटवर्क बनता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और थिंग्स से मुराद अदर देन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ये डिवाइसेस हैं जो हमारी होम अप्लायंसेस भी हैं, या होम यूजेज के अंदर, या हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्ट करती हैं वो यूज हो रही हैं।
2: सर, अभी आपने जिक्र किया कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना डिवाइस का जरूरी है, तो सर क्या हम किसी ऐसी डिवाइस को भी IoT नेटवर्क का पार्ट बना सकते हैं जो इंटरनेट इनेबल्ड ना हो?
3: نہیں, اس میں شرط یہ ہے کہ دیٹ شوڈ بی انیبلڈ, دیٹ شوڈ بی کیپیبل آف کہ اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں ان شارٹ ود دا انٹرنیٹ. اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو رہی تو دیٹ مینس کہ وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے کانسیپٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو وہ تھنگس یا وہ انٹیٹیز جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی انٹرنیٹ آف تھنگس کا پارٹ نہیں ہے.
2: سر آپ نے کہا کہ سرویلنس کے لیے ہم یہ سارا نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں اور کہیں سے بیٹھ کے بھی اپنی چیزوں کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے, تو سر اس کی اگر کوریج کی بات کریں تو اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں؟
3: کوریج ایریا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے, جیسے آپ موبائل پہ کنیکٹڈ ہیں اور آپ جا رہے ہیں کہ میرے پاس موبائل ڈیٹا آن ہے اور میں چل رہا ہوں, میں نے رائڈ کروائی ہے, میں یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہوں اور میرے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے,
2: جی,
3: تو اگین جب تک آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی نہ ہی آپ اپنی کمپیوٹنگ ڈیوائس کے ذریعے کسی بھی اور انٹیٹی کو آپریٹ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ انٹیٹی اگر انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے تو وہ بھی اویلیبلٹی اپنی شو نہیں کرے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ میں اگر سی سی ٹی وی کیمرہ اپنے چیک کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آف ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ کیمراز تو چل رہے ہیں لیکن وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے بیکاز آف دا ان اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میرا موبائل ڈیٹا پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے لیکن ان دا اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ میں ان کو ویو نہیں کر پا رہا کیونکہ گھر کا انٹرنیٹ آف ہے اور وہ سی سی ٹی وی کیمراز گھر کے انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ. اور میں اپنے اگر ایک اور ایگزامپل میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا گھر کا اے سی آن چھوڑا ہوں فار ایگزامپل, اور میں اس کو آف کرنا ایسا اکثر ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے, اور میں اس کو آف کرنا چاہتا ہوں تھرو مائی موبائل ڈیوائس لیکن جو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, تو جو میرا جو انورٹر ہے یا میرا اے سی ہے وہ پھر اس کو میں آپریٹ نہیں کر سکتا. تو انٹرنیٹ انیبلڈ ہونا اور انٹرنیٹ پہ کنیکٹیویٹی ہونا دیٹ از ویری اسینشل.
2: سر آئی او ٹی کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا کیا ہے اور کس طرح ہم ان کو کر سکتے ہیں؟
3: ایک جو دو ایگزامپلس میں نے آپ کو بیسٹ بتائی ہیں, نمبر ون از بیسیکلی کہ جو ہم سی سی ٹی وی کیمراز کو آپریٹ کر رہے ہیں,
2: جی,
3: اور ہوم آٹومیشن کے حوالے سے میں اپنی کوئی بھی اپلائنس ہے اس کو مینیج کرنا چاہ رہا ہوں, تو دنیا کیونکہ بہت تیزی سے آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے, ہوم آٹومیشن کی طرف, اور وہ ہوم آٹومیشن نہیں آفس آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے آفس کے جو روزمرہ امور ہیں ان کی آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے. تو وٹ ایور یو وانٹ ٹو آٹومیٹ تھرو انٹرنیٹ, تو دیر از بیسیکلی اے پاسبلٹی کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس کا کانسیپٹ ہے, وہ بیسک کانسیپٹ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اور جب بھی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوم آٹومیشن پہ جائیں گے تو ہمیشہ انٹرنیٹ آف تھنگس کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی لاگو ہوگا اور اپلیکیبل ہوگا.
2: لسنرز, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا, سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे IoT के बारे में, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर आबिद बशीर। जी सर, अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें तो IoT में मजीद क्या काम हो सकता है?
2: रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन जो थ्रेट है हमेशा वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट ही रहता है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एस्पेक्ट ऑफ द IoT बेसिकली। तो यहाँ पे अब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के हवाले से कई एल्गोरिथम्स हैं, कई अप्रोचेज हैं जो ऑलरेडी यूज हो रही हैं इन द मार्केट। और जो मैंने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया कि हमें ये मेक श्योर करना है कि जो इंडिविजुअल आपकी IoT की सर्विस को यूज करना चाह रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, कोई आपकी आइडेंटिटी को मिस यूज तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए वी हैव टू डिनाई द इररिलेवेंट यूज ऑफ सर्विस। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट के अंदर डिनाइल ऑफ सर्विस जो है वो बेसिकली इसके ऊपर भी बच्चे काम कर सकते हैं। और डिनाइल ऑफ सर्विस दो किस्म का होता है, एक बंदा जो जनमन है और वो अपनी सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है IoT के एनवायरनमेंट में, तो उसको डिनाई कर दिया जाए, इसका मतलब किसी ने आपके नेटवर्क को हैक कर लिया अनऑथराइज्ड तरीके से। और दूसरा ये है कि आप उस बंदे को डिनाइल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, डिनाई करें सर्विस को एक्सेस करने के लिए डिनाइल ऑफ सर्विस के जरिए जो ऑथराइज्ड नहीं है। तो इसके लिए ऑलरेडी कई एल्गोरिथम्स हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि वो ऑलरेडी अगर एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं, सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स या मैकेनिज्म्स, तो हम और मजीद क्या रिसर्च करें? वी हैव टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि
1: सर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं नेटवर्क्स को, इस बारे में भी काम हो सकता है।
2: नेटवर्क जैसे जैसे आपका नेटवर्क का कवरेज एरिया एक्सपेंड होगा, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ेंगे, यूजर्स इन्वॉल्व होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स जो हैं या सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, उनको वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट उसमें रिसर्च के जरिए ही लाई जा सकती है। तो रिसर्चर्स के लिए ये मैं कहूँगा कि वो उसको आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या लूप होल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए, और अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को या प्राइवेसी मैकेनिज्म्स को जो है वो इंश्योर करने के लिए इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, ताकि क्योंकि दुनिया कल को बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रही है और हर कोई होम ऑटोमेशन या ऑटोमेटिकली वो क्या चाहता है कि जी मैं इंटरनेट के जरिए हर काम अपना परफॉर्म कर सकूँ। तो इन द एंड उसके लिए क्या है कि ठीक है आप फैसिलिटी तो दे रहे हैं, मगर आपको सिक्योर और प्राइवेट या सेफ एनवायरनमेंट भी देना है। तो दैट इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है।
1: जी सर, अगर IoT के फ्यूचर के बारे में हम बात करें तो इस पे मजीद काम हो सकता है, ये क्या स्कोप आपको लगता है इसका?
2: इस पे काम पहले भी हो रहा था, लेकिन इन द लास्ट 5 to 10 years अगर हम रिसर्च पेपर्स को चेक करें तो उसमें बहुत ज्यादा इसका जिक्र भी बढ़ा है और इस्तेमाल भी बढ़ा है। लेकिन वो क्यों बढ़ा है? बिकॉज अगेन इंटरनेट की दुनिया बहुत जो है वो रैपिड हो गई है, स्पीड अप हो गई है, और अब हम 4G से 5G में जा रहे हैं, 6G 7G पे भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्च कंडक्ट कर रही है। तो अगेन जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं तो फिर अगेन इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट है और ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली फ्यूचर रिसर्च जो है या फ्यूचर ग्रोथ जो है इसकी बहुत फास्ट भी है और बहुत ब्राइट भी है। तो नेक्स्ट मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले कम अज कम 5 to 10 years जो है वो IoT में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होने के चांसेस हैं। और खाली IoT को अगर हम सेपरेटली देखें तो वो एक इंडिविजुअल चीज़ है, जब हम IoT का इस्तेमाल मर्ज करते हैं विद अदर टेक्नोलॉजी जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इसके अलावा आपकी जो बाकी कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजीज हैं उनको अगर हम ब्लेंड कर दें, मर्ज कर दें, तो फिर एक नया हाइब्रिड मॉडल बन जाता है। और वो जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक नया कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर सिक्योरिटी प्राइवेसी इशूज भी नए हैं, तो फिर उस केस में जो है वो फिर डोमेन या स्कोप और बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर नई एडवांसमेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें IoT के साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट हैं, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, उनका यूजेज भी बढ़ रहा है साथ साथ, तो एक नया एनवायरनमेंट बनने के बहुत चांसेस हैं और नई एडवांसमेंट्स आपके सामने आने के चांसेस हैं, और फिर नई एप्लीकेशंस बिजनेस वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगी या बनाने का सोचेंगी या सोच रही होंगी डेफिनेटली, जो इन तमाम टेक्नोलॉजीज को मर्ज करके एक हाइब्रिड मॉडल आपके सामने ला के रखते हैं।
1: हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
2: जी मेरे लिए ऑनर की बात थी।
1: सर ये बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थी, उम्मीद है लिसनर्स को भी IoT के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इजाजत चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke Dhanyan.

University of Central Punjab, FM 92.6, EUCPK, Dunia. और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, सुमेर सही, अपने सभी सुनने वालों को, अपने सभी चाहने वालों को, और अपनी प्यारे से सामीन को, तहे दिल से करती हूँ जनाब, खुश आमदेद, जी आयानू. इस शो में हम बात करते हैं मौसीकी की, हम सुनते हैं मौसीकी, हम सुनते हैं ऐसी मौसीकी जो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं. लेकिन पता है क्या, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखने के लिए होती हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए. तो इसलिए हम आपकी यादों को थोड़ा सा, आप यूँ कह लीजिए कि आपकी यादों को थोड़ा रोशन करते हैं, एक नई बुनियाद देते हैं, एक तसलसल बनाते हैं, ताकि आप सुन सकें ऐसी मौसीकी और आपको पता चले कि हाँ, ये भी है. क्योंकि बाज़ुकात जैसे कि ज़माने आगे बढ़ते जाते हैं और ज़माने की तेज़ रफ्तारी के साथ हम अपनी बहुत सी प्यारी चीज़ों को पीछे छोड़ाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त की धूल में ना ही मैली होती हैं, ना ही उन पे गर्द आती है. वो हमेशा पहले दिन की तरह सुरखुरू रहती हैं. तो जनाब, आज भी हम ऐसी मौसीकी सुनेंगे. आज हम थोड़ी सी बात फैज़ अहमद फैज़ पे भी करेंगे, और साथ साथ, जी बिल्कुल, मेरे प्यारे प्यारे सामी, आज हम बात करेंगे आपकी. क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी जो है वो ऐसे ऐसे हिचकोले लेती है. अब हिचकोले लेती है तो पता है क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें कभी इधर जा रही होती हैं, कभी उधर जा रही होती हैं. समझ नहीं आ रहा होता कि जनाब करें क्या, किस सिमत को जाए, कहाँ को है मंजिल, कहाँ को जा रहा है राही. चले जनाब, ये बातें तो हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि फौरन से बेशतर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं आज की पहली गजल से. और पहली गजल मेरे दिल के बहुत करीब है. जब आपको सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे दिल के करीब क्यों है. फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई ये खूबसूरत सी गजल आप सभी के नाम.

बोल के लब आजाद है तेरे जी, बिल्कुल जनाब, हम सभी के लब आजाद है। हम कह सकते हैं जो हमारे दिल में है, हम बोल सकते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लबों को सिया नहीं गया, हमारे लबों पे ताले नहीं पड़े। यही तो बात थी फैज़ अहमद फैज़ की, उनमें यह खासियत थी कि उनकी शायरी एक वलवला जोश व खरोश लाती है, एंथुजियाज़म जिसे आप कहते हो एंथुजियाज़म, वो डिवेलप होता है। आप चाहते हो कि हाँ बस कुछ कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि बस जो दिल में है वो कर जाओ। अच्छा मुझे आप बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ जब आपने बोलना चाहा और आप बोल ना पाए? कितनी बार ऐसा हुआ जब आपने बोल लिया लेकिन आपको सुना ना गया? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके बोलने को यूँ कह लीजिए जरा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगी, और आपको कहा गया कि नहीं तुम तो रहने ही दो? होता है ना? हाँ अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। और पता है क्या, ये जो बार बार हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि नहीं यू आर नॉट एबल टू डू दिस, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ये कर सको, तुम ये कह सको, तो पता है वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि ताकि हम अपने अंदर के उस इंसान को जगाएं जिसे हमने कहीं सुला दिया होता है। सच्चाई कड़वी होती है, कड़वाहट होती है उसमें, और यही तो सच्चाई का शेवा है, यही तो है सच्चाई का हुस्न जनाब। इसलिए डरे मत, कह दीजिए जो दिल में है, कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। अरे बोलिए, सब सुनेंगे, अगर नहीं सुनते तो अपनी बात में, अपने कहने में वो कुव्वत लाओ, वो चीज़ लाओ कि सब कह उठें कि अरे क्या कमाल की बात की है, अरे वाह भाई वाह, बात करनी हो तो ऐसे करनी हो। जैसे ऐसा होता है ना कि हम अगर किसी से बात करना चाहें तो हम उसकी तवज्जो अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो हमारी तरफ माइल हो जाए, हमें सुनने लग पड़े। जैसे कि आप यूँ कह लीजिए कि आप एक महफिल में बैठे हैं। अच्छा चलिए एक और बात भी कर देती हूँ मैं आपसे। इश्फाक अहमद साहब कहते हैं कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हो और आपको एक बात याद आ गई हो, और वो अचानक से आपको कोई बात याद आई और आपने कहा है कि इस इंसान ने फलां वक्त में फलां बात कही थी, अच्छा अब पता है मसला क्या? अब मसला ये है कि वो जो इंसान बैठा हुआ है उसने जो बात कही थी ना, वो इस तरह की बात है कि अगर आप उस महफिल में वो बात कह दोगे तो पहली बात उसकी दिलाजारी होगी, और दूसरी बात उसकी इज्जत उस महफिल में घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो पता है क्या करें? आपको पता है? चले मैं जानती हूँ कि आपको पता है, लेकिन फिर भी बताती चलो। इश्फाक अहमद साहब ने कहा कि तब अपनी उस दलील को, तब अपनी उस बात को रोक लो और उस इंसान को बचा लो। अरे देखा, कहते हैं कि बातों से बातें निकलती हैं, यहाँ बातों से बात निकल आई ना, यानी किसी इंसान की इज्जत करना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। हम जितनी इज्जत दूसरों को देंगे और जितनी दूसरों की इज्जत का ख्याल रखेंगे, जितना दूसरों की इज्जत का ख्याल रखेंगे उतना ही हमारे हिस्से में वही चीज़ें आएंगी। कहते हैं ना, जो चीज़ें दोगे वही वापस आएंगी, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो हकारत हो। तो ऐसा कहते हैं कि अपनी अगली गज़ल सुनते हैं और इसके बाद वापस आके आपसे
बहुत सी मजीद बातें करते हैं, ठीक है? हमारे साथ रहेगा।

इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। जी बिल्कुल, फैज़ अहमद फैज़ की हम ये खूबसूरत नज़्म सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिलों को ये छू सी गई होगी, आपके तारों को, यानी आपके दिलों के तारों को, आपके दिलों के सुरों को ये बजा सी गई होगी। जी जनाब, यही तो बात है इसकी। अरे मरहम बन के आती है, ये कैसी दुनिया है, जादू की दुनिया, ले जाती है हमें कहाँ से कहाँ, पता ही नहीं चलता। अच्छा चलो एक बात करते हैं, मैं आप पर कुछ बताती हूँ। कहते हैं एहसास एक दौलत है, एहसास क्या है? क्या एहसास करना सिर्फ महसूस करने का नाम है? क्या एहसास जो है वो हसास तबीयत का नाम है, हसासियत का नाम है? क्या है ये हसास होना, ये एहसास क्या है, फीलिंग्स क्या होती हैं, बताइए ना। चलिए मैं मुश्किल आसान किए देती हूँ। ये जो एहसास होता है ना, ये एक ऐसी दौलत है जो गैरों को अपना कर देती है। ये जो एहसास है ना, पता है ये क्या है? ये वो है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। एहसास, अरे पता है एहसास क्या है? एहसास वो है जिससे हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। एहसास वो है जब हम किसी को जानते भी नहीं होते, लेकिन हम उसकी मदद कर देते हैं। ये सब एहसास ही तो है। और अगर एहसास हो ना, तो बहुत से रिश्ते बन जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मोहब्बतें आ जाती हैं, खुशियाँ आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, लोग अपने हो जाते हैं, अपने दिल के बहुत करीब। हमारा दिल जो है ना, एहसास का शुक्र गुजार है, या आप यूँ कह लीजिए दिल का सबसे हसीन साथी एहसास होता है, क्योंकि इनका ताल्लुक बहुत मजबूत होता है। हम सभी कहते हैं कि लाहौरी जो होते हैं, यानी जो लाहौर में रहने वाले होते हैं, वो बड़े दिल वाले होते हैं। तो हम लाहौरियों की यही तो बात है जनाब, कि हम बड़े दिल वाले होते हैं। इतने बड़े दिल वाले होते हैं कि हम इस छोटे से दिल में, जिसको हम बड़ा बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समेट लेते हैं। और हाँ, अगर आप उदास बैठे हैं कमरे के किसी कोने में, आप मुझे सुन रहे हैं, या किसी भी ज़रिए से आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर किसी ने आपके एहसास की कदर नहीं की, तो दिल मत हारिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है, बहुत हसी है, बहुत खुशगवार है, इसमें रानाइयाँ हैं। अरे क्या बात करते हैं, आप यूँ कह लीजिए कि इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जैसे हम कभी कभार जो है वो ज़िंदगी का बस एक फेस देख रहे होते हैं, एक लिंक देख रहे होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। हर बात में जैसे मैंने कहा था कि बात होती है, तो फैज़ अहमद फैज़ ने भी कहा था कि बात की अंदर की बात समझने के लिए ज़ात के अंदर की ज़ात से राब्ता होना ज़रूरी है। अच्छा, बात तो मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी है, अब इसको समझाना भी पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते हैं कि पहले हम ग़ुलाम अली को सुन लेते हैं, और उनकी आवाज़ में ऐसी गज़ल
जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सुनिए और लुत्फंदोज होइए। पहली बार राजीना अखियाँ ने तकिया, एह जया तकिया कि हाय मार सुटिया।

तो उस पे मर गया कैसे? अरे मेहती हसन की आवाज हो और ऐसे अल्फाज हो तो कहने को तो बनता है कि क्या ही बात है, कमाल है, लाजवाब है, बाकमाल है। तो जनाब बाकमाल की बात आई है तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को जो हमारे साथ हैं, जिनकी समातों से हमारी आवाज़ टकरा रही है, तो मैं कहती चलूं कि आप बाकमाल हैं। पता है, जानती हूँ पता है, लेकिन मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ ताकि कुछ बात आपके जहन में बस अटक जाए और आप वो सब करना शुरू कर दो। आप बाकमाल हो क्योंकि आपका दिमाग बहुत चंचल है, गुस्सा तो आपके पास भी नहीं भटकता, अगर आता है तो आप कंट्रोल कर लेते हो। उसके अलावा आपकी जुबान बेहद मीठी है, इतनी मीठी कि ये किसी का दिल नहीं दुखाती। और पता है ये जो दिल है ना, बहुत नर्म है, ये दिल किसी का दिल नहीं दुखाता। तो आप हुए बाकमाल। तो जनाब हम अपने प्रोग्राम में तैयारी गल्फ में गलती भी सुनते हैं और साथ साथ हम आपसे कुछ बातें भी करते जाते हैं। तो आज जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, लाइक हम बात कर रहे थे एहसास की, हम बात कर रहे थे खुशी की, हम बात कर रहे थे कामयाबी की। अब एहसास, एक बात मैं अक्सर कहती हूँ, इश्फाक अहमद साहब ने कहा था कि हमें फातिहा लोगों के मरने पे नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि हमें तो फातिहा एहसास के मर जाने पे पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान मर जाता है तो उसका जो किरदार होता है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब ऐसा साथ मरते हैं तब इंसानियत ख़त्म हो जाती है, तब आपके पास कुछ नहीं रहता। अगर एक इंसान को तकलीफ़ है, वो सड़क पे पड़ा बिलबिला रहा है, वो दर्द से कराह रहा है, वो चीख रहा है कि मेरी मदद करो, आसपास से लोग गुजर रहे हैं, उन्हें कोई एहसास ही नहीं है, अरे वो कहते हैं कि हम क्यों करें, हम नहीं देखते, तो क्या कहेंगे आप इसको? ये एहसास ही तो है, ये एहसास की तो दौलत है, ये एहसास ही तो है कि हमें खुशी होती है। अगर हम बिल्कुल बेहस हो जाएं तो हमें खुशी का एहसास कैसे हो? अच्छा, जब हमें कामयाबी मिलती है तो हम खुश होते हैं, और खुश कैसे होते हैं? खुश भी तो एहसास होने से आता है ना। चले, कहते हैं कि कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत तो भाई उसके लिए ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन पता है क्या, मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी के बारे में सोचने लग पड़ो, एक कामयाब इंसान की तरह सोचो और सोचो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं गिरा, अगर मैं मुझे ठोकर लग गई, मुझे कोई संभालने वाला ना आया, तो अपना हौसला मैं खुद हूँ, अपनी ताकत मैं खुद हूँ, अपनी कामयाबी मैं खुद हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर औकात लोग तब नहीं आते जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, लोग तब आते हैं जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। यानी आप गिरोगे तो कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जब संभल जाओगे ना, जब वो चीज़ कर लोगे, जब वो चीज़ पा लोगे, तो बहुत सारे हाथ आ जाएंगे, बहुत सारे सहारे आ जाएंगे। वो ये पूछेंगे कि हाँ तुमने कर लिया, अरे वाह तुमने तो कर लिया,

कदमों में तेरे जीना मरना, नूरजहां की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा। फिल जनाब, आज भी ऐसा हुआ कि वक्त तेजी से गुजरता गया और हम उसको कैद नहीं कर पाए। अरे ये कैद हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इससे कुछ लम्हों को संभालने की कोशिश जरूर करते हैं। तो जाते जाते हम आपसे ये कहेंगे कि हमेशा खुश रहें, खुश रहें। और एक बात जो मैं कहती जाऊं कि कामयाबी जब मिलती है तो तब खुशी जरूर होती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि खुशी में ही आपने कामयाबी ढूंढ ली हो? अजीब बात कर दी मैंने, तो बताई जाती हूँ। जरा सोचे कि किसी के लबों पे आपने मुस्कुराहट फैला दी, किसी को रोते रोते हंसा दिया, तो कामयाबी हुई ना। इसी तरह कामयाबियां समेटते रहे, अपने से दूसरों को बेहद खुश रखिए, खुशियां बांटते रहे, क्योंकि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, जब मैं खुश होती हूँ, जब आप हम सभी खुश होते हैं। लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। और एक बात और, अपने लबों पे चंद लम्हों की मुस्कुराहट लाने के लिए किसी की मुस्कुराहट मत छीनिए, चाहे वो बहुत छोटी सी कीमत अदा करनी पड़े आपको उसको मुस्कुराहट की। उस मुस्कुराहट की छोटी सी भी कीमत आप अदा करनी पड़ जाए आपको, तब भी वो मत छीनिए किसी से, किसी की खुशी मत छीनिए। और खुशियाँ बांटते रहे, खुश रहें, खुश रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। प्यारे गज़ल को सुनते रहेगा, आप सुन रहे थे प्यारे गज़ल, मेज़बान सुमेर सगीर के साथ। अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मुशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आँखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आँखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आँखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आँखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आँखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन गजा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.